Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: की एक बस्ती में रहने वाला। आज यहाँ आया है मुंबई बेचने। बदले में कुछ तो चाहता होगा, क्या?
1: मांडवा
0: रावण से उसकी लंका ही मांग ली।

Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: Lumbu FM 89.6 MHz.
1: अब रंग थेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो क्वितामा गुनासो थालासुगो जयमसी तथा नमस्कार लासु फ्याफुला कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ तथा जीवन क्षणगतला श्रृंखला अङ्क 34 रङ्गी स्वागत मुला न वियोग तामाङ जब रङ देन गाल गाङसाल गिलास सेम्नेबा थुङबा खेतामुला चुद ज्याबा नही तरिका मुला रङ या नि बिबरी हामसुमुला गिलास गाङसाल प्लिङबा मुला वा रङ चुद गाङसाल थान थान बिबरी हामसुला रङला यारी रङला सेम एन हेनोन सेलम गाङसाल गिलास तबरी रङ कृतज्ञता मनोवृद्धि थानबरी हामसुला वा रङ गुनासो लबरी हामसुला तिग्दविसम रङला थुङबा से गाङसल जिन्बमुला चु याकरकी सरल उदाहरण हिन्बा जोसे प्रत्येक दिन याङसे महसुस लाभा आनन्द वा दुःख निर्धारण लब्री याङला मनोवृत्ति काते महत्वपूर्ण मुला बिसी अनमुला याङ बेनन्से लुइरी नकारात्मक आजीवा परिस्थिति दा अनुभव लामुला थे परिस्थिति कदे ज्ञान व्यवहार लामा याङला दृष्टिकोण से याङ आनन्द से प्लिङ रि सोजिबा मुला कि दुखा देन शोक से प्लिङमा लुई सोजीवा मुला विवाह ताम्रे निर्धारण तामुला फिलिपी 2:14 थेबासनमा गनगन देन कल आलना जम्मन गे दिक्सी लाउ तिगै मिसे देन लुइला बेनन जज ताम गदेला बारिरी गुनासो लब्रे सेम लमुला जुन थेनी गदिसे सेम लब अनुसार चलब लजीवा अरे थेनी गदे मौसम ल बारिरी तिलमा मुन्छी छोन निन्द्रा याङबरी देन मिगदेसी थेनी गदे देन हरङ व्यवहार मुला विवा बारी गुनासो लामुला थेनी गदेला गुनासो कदेला सूची हेराङबा दुई दोना तलाब लाला ग्रन्थी 11:1 थेली छ परम प्रभुला नो ब्याङ दोबलासी थे निगदे राङला कष्ट कदेला बिसरी गनगनला लाबरी थालिजी जब परम प्रभुसे चु न्यान्छुजी तब रोल बोमो देन परम प्रभु अग्नि सल्केर छाउनेला मच्छा बोबरी भस्म लसुजी लालन गुनासो लब मिगदेला पारी रे परमेश्वर तिगा मनसुल विवताम स्पष्ट संकेत चु बाइबल पद से पिन्सुमुला चु व्यवहार मांसी रु लालन बोमो रेसुमुला एफिसी 4:29 एनी गदे रङ रङ नङरी आजवताम थलौ बरु जवताम दिन स्यन्दो मिला विश्वास बढव तवन निभा खालसताम जे लौ तिग्दविषम एनी गदेसे लवा ताम ग्याम मिगदेदा जेबा तगै यङला सुङ्ग्याम थोन्बा शब्द गदेरी हाइम दमन सकारात्मक जेबा तदोला जुनसे याङला ताम न्यानम गदेदा सुधार लबरी रोलला याकुब 3:5-9 थेरङ लासिन याङला लेनोन युल्ल जजा वा सेम हिन तग तसैनोन थेसे ग्रेन ग्रेन ताम लमुला च्यागो मेला जजबा पिलिङ्गो गिक्सिन ग्रेन ग्रेन रि क्रोसी नाम नास लामुला चुनोन लेसे याङसे प्रभु परमेश्वर आवला जय जयकार लामुला विषम चुनोन लेसे परमेश्वर से राङमन रुब्री शोभा निगदेनोन के लामुला याङ प्रत्येक देन परिस्थिति गरी हराङलासी प्रतिक्रिया पिनबाला विवाद छनोटमुला याङ परमेश्वरला प्रतिज्ञारी स्वीकार लब्रे देन आभारी चिब छनोट लबरे हमला वा याङ याङला परिस्थिति गदेला बारेरी गुनासो लामा छनोट लबरी हामला जब क्वि ताइमुला याङ थे नामला सकारात्मक पक्ष गदेरी ध्यान केन्द्रित लबरी हामला रङबन किसान गदेसे रङला बाली ते बरी क्वि याङमुला याङला मनोवृत्ति से याङसे लाभा दिशा निर्धारण लामुला जब याङ कृतज्ञ तब मानसिकता दिन दिक्परि याङला सोच परिवर्तन होला थेन्दे याङ याङला परिस्थिति दा परमेश्वरला वचन दि मुभा प्रतिज्ञा ग्याम हावा दृष्टिकोण ग्याम च्याजीबा मुला तब याङ आनन्द से प्लिङमा लुई बिताबला बरी हामला याङला दिमाग याकर्गी लानन शक्तिशाली उपकरण हिन्बा जब याङ याङला सोच पोला याङला गे गादे पोला थेन्दे जब याङ याङला भविष्यला ज्ञान पोला रोमी 8:28 परमेश्वर जे रङ से मनमा अनुसार धन्न जम्मन निगदे देन खेदा माया लबा मिगदेला लागिरी जम्मन सेगदेदा जबा तना लाला विवतम यङद थामुला आज जब परिस्थिति गदेदा सकारात्मक जब सोझला क्षम व्यवहार लस्युगो रङदा माया लबा परमेश्वर मुस्युला विवतम सेवन कृतज्ञ सुगो थेन्दे रोसे रङला लुइला बेनन अध्यारो मुलाका दिदी रङदा मार्गदर्शन लस्युला आमेन। रङला जीवन रे परमेश्वर जी प्रशस्त आशिष पिन्छु गई। प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यान्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रे रङनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353939। हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी।
2: Time check. It's 7 PM.
3: अहिले साँझको 7 बजेको छ।